हाँ जी, वापस आ गए। तुसी सुन रहे हो सांझी वास रेडियो दा प्रोग्राम सत श्री अकाल मेलबर्न। ते जिथे भी हो अपना ध्यान रखो, रोड उत्ते हो ते सेफ्टी नाल ड्राइव करो। ते अगले दो घंटियां लई, यानी कि हुण ते 20 मिनट निकल गए होए ने, 20 मिनट लैस दो घंटे अपना साथ रहना है। ते जे तुसी घर विच हो या ऑफिस विच हो, जिथों ईजीली मैसेज कर सकते हो वट्सएप के उपर, तो सानू मैसेज कर सकते हो 0434233971 के उपर। जे किसी नू तुसी बर्थडे विश करनी हो, कोई भी विश करनी हो, एनिवर्सरी विश हो सकती है, तो या फिर अपनी पसंद का कोई गीत सुनना हो, फीडबैक देनी हो, वट्सएप के उपर मैसेज कर सकते हो 0434233971। ते आज गल आपां सिर्फ हैडलाइनस दी नहीं करनी, असीं ये भी समझांगे कि कोई खबर साडी रोज़ाना जिंदगी दे नाल किवें जुड़ जांदी आ। ऑस्ट्रेलिया दी माइग्रेशन पॉलिसी विच अज एक महत्वपूर्ण डिवेलपमेंट दी उम्मीद आ। ते विक्टोरिया दीआं रोड्स अते पॉट होल्स ये फिर हैडलाइनस बन चुकियां ने। ते नाइफ क्राइम नूं लैके पुलिस सर्च पावर्स बारे वड्डी पॉलिसी डिस्कस करन चली आ। हाउसिंग मार्केट विचों सैलर्स दे प्रॉफिट्स घट रहे ने, ते मेलबर्न यूनिट्स दे अंक इंटरेस्टिंग होए ने। पंजाब तो ड्रग्स नेशन राशन कार्ड ते स्टबल बर्निंग बारे ताज़ा अपडेट्स भी ने। ते दुनिया दियां वड्डियां आपां हैडलाइनस भी लवांगे। सो इस तरह दियां गल्लां बातां आपां अज दी सवेर विच करनियां ने। ते पहले आपां हैडलाइनस दी जे गल कर लईए कि होम अफेयर्स मिनिस्टर टोनी बर्क अज कैनबरा दे नैशनल प्रेस क्लब विच सरकार दी लंबे समय तों उडीकी जा रही माइग्रेशन स्ट्रैटेजी बारे डिटेल्स देण वाले ने। सवेर तक मिल रही कन्फर्म जानकारी मुताबक सरकार टैंपरेरी माइग्रेशन रूल्स नूं होर टारगेटेड बनाउण दी योजना बना रही है। ते नैट ओवरसीज माइग्रेशन नूं लगभग 300,000 तों घटा के 2028 तक 225,000 दे नेड़े लियाउण दा टारगेट आ। पर एक गल इत्थे बहुत ही इंपोर्टेंट आ समझण वाली कि इस वेले स्पीच होणी बाकी आ, इसलिए सोशल मीडिया उत्ते चल रही हर वीज़ा डिटेल नूं कन्फर्म्ड रूल ना समझो। विक्टोरिया दे विच रोड कंडीशन दी अज वड्डी खबर आ। नवी ऑडिट रिलेटेड डाटा एनालिसिस मुताबक हज़ारां रिपोर्टेड पॉटहोल्स जून विच अनरिजॉल्व सन। मेलबर्न विच मेल्टन अते ह्यूम वर्गे आउटर सबर्बन एरियाज विच अनरिजॉल्व पॉटहोल्स की गिनती बढ़ रही है, जदों के मॉर्निंगटन पेनसुला मेट्रोपोलिटन एरियाज विच खास तौर पर सामने आया है। स्टेट गवर्नमेंट ने इस फाइनैशियल ईयर विच 5 लाख पॉटहोल्स रिपेयर करने का वादा भी किया है। विक्टोरिया दे विच क्राइम नाइफ जड़ा आ उहदे जवाब विच प्रपोज जैक्स लॉस स्टाइल सर्च पावर भी डिस्कशन विच ने। ते गवर्नमेंट ने कहा है कि री इलेक्शन होण दी सूरत विच पुलिस नूं पब्लिक प्लेसिस विच मेटल डिटेक्टिंग वॉन्ड्स नाल ब्रॉडर सर्च पावर्स दित्तियां जाणगियां। सपोर्टर्स इस नूं सेफ्टी मेजर कह रहे ने, जबकि क्रिमिनोलॉजिस्ट जिहड़े ने अते जिहड़े राइट्स ग्रुप वाले ने उहनां दा रेशियल प्रॉफिटिंग नूं लै के कंसर्न उठाया जा रहा है। एक पॉजिटिव नैशनल हैडलाइन भी हैगी अज दी, कहिंदे ने कि वर्ल्ड इकनोमिक फोरम दे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 विच ऑस्ट्रेलिया पहली बारी ग्लोबल टॉप 10 विच आया, ते ऑस्ट्रेलिया नूं 8वां स्थान मिलिया। रिपोर्ट इकनोमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, हैल्थ अते पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वर्गे मेयर्स नूं वेखदी आ। ते हुण जे आपां पंजाब वल चलीए, ते नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दे रोड मैप विच पंजाब दे 6 डिस्ट्रिक्ट्स अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, फाजिलका, फिरोजपुर ते लुधियाणा नूं ड्रग कंट्रोल स्ट्रैटेजी लई अल्ट्रा सेंसिटिव कैटेगरीज विच रख्या गया है। पंजाब विच नवें राशन कार्ड्स लई एप्लीकेशन दी गिनती 19.5 लाख तक पहुंची आ, जबकि सरकार ने 10 लाख नवें कार्ड्स दा ऐलान कीता सी। ते इस दी जिहड़ी वेरीफिकेशन आ ओह चल रही आ। ते जे स्पोर्ट्स विच गल करिए, ते सिडनी स्वॉन्स ते फ्रीमेंटल डॉकर्स विच
AFL ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਫਾਈਨਲ ਕੱਲ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ SCG ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਕੁਝ ਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਸੌਂਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਗ ਸਟੋਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।